0: केन्द्र धार्मिक स्थल लगायत पर्यटक स्थल होटल पदमाग में पनि क्षति पुर्याएको छ। गोर्खापत्र में खबर छ।
1: सरकार का अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणी का पदाधिकारी विदेश भ्रमण तथा भोज में सहभागी हुँदा प्राप्त करने उपहार राज्यकै हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। त्यस्ता उपहार को एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्न समेत अदालतले सरकार का नाम में निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
0: देश संघीयता में गएको एक दशक पूरा भइसक्दा समेत सरकारले सबै स्थानीय तहमा विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउन सकिरहेको छैन।

घर रम्र निरीमाया मा कैकसुलीले आई मै रम्र निरीमाया मा कैको फुलीले भेटै नहुने खोला परी निरीमाया वारी मारू

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.